0: जुळल्या सुरेल तारा तुमच्या आमच्या स्वरांच्या सोबतच शेती युवक महिला आणि मनोरंजन खास आपल्यासाठी. आजच ट्यून करा रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं आपला आवाज. ऐकत राहा, आनंदी राहा.
1: तुम ऐसी कोई भी लड़की नहीं हो.
2: कैसे एक्सप्लेन करूं कि तुम स्पेशल हो?
3: ये भी मैं बताऊं, मैं कैसे स्पेशल हूँ ये मुझे बताना है. तो तुम क्या करोगे? रोल क्या है तुम्हारा?

0: नंतर या चित्रपटातील या सुंदर अशा गीताचा.
1: किरण, आय लव यू, आय लव यू किरण.
2: वाह, क्या तेवर है सुनील के आने का.

वहमों गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: तुम्हारे डैड इस हफ्ते जेल से रिहा होने वाले हैं। अगर तुम शादी उनके आने के बाद करना चाहती हो तो।
1: नहीं, मुझे उनका इंतजार नहीं करना।

0: को देखने दो,
1: जल्दी रहे।
0: अरे तो चलने दो,
1: खुली सड़क है बाबा।
0: तो क्या हुआ भाई?
1: हाँ तो हट जाए
0: हो जाए खुल्ला।

जाने दुश्मन, समझ लूं ऐसी नहीं है तू, मगर जो मैंने समझा था वैसी भी नहीं है तू।

0: बता दूं? वो यहीं पर
1: नहीं है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पर रुमाल रख दो बच्चा।